0: That was Decay Dance, Defence Budget.
1: Are you a musician with a connection to the top of the South? Would love to hear your music. Get in touch through freshfm.co.nz and be part of Sounds Local.
2: Fresh FM is your community access radio station and charitable trust, sharing diverse voices, local stories, and great music across Te Tohu. We invite local businesses and organizations to support Fresh FM through sponsorship. It's a meaningful way to reach an engaged local audience while supporting independent community media. Be part of something special. Sponsor Fresh FM and help amplify local voices. Visit freshfm.co.nz to learn more.
3: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।

0: Discover local voices, programs, and podcasts from across the top of the South at freshfm.co.nz. It's 10 o'clock.
1: Word is power. It can change your life. Greetings and kia ora koutou. I'm Tania, your Fresh FM host of the Word is Power show. Speaking, hearing, meditating, enjoying God's Word every Monday at 7 p.m. with a repeat every second week. Get ready. This could be the shift you've been waiting for. Listen on air, online, or catch the podcast anytime.
2: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।